0: पाकिस्तान दिल।
1: अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं जुनेद जमशेद और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम।
2: दी वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम मुख्तसरन WFA दरखास्त के लिए खुली है। दरखास्तें घरेलू बुनियाद पर दी जाती हैं और घर के अरकान का हांगकांग का रिहायशी होना जरूरी है। एक घराना